अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अनुराग में। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनाते हैं आपको बाहरों की मंजिल फिल्म का गीत।

0: अरे सा तो ठीक से लगाओ।
1: सा सा सा सा सा सा सा
0: सा
1: सा।
0: हाँ, अब गाओ।
2: अरे ये गाएगा क्या, इसके पास बोल तो है नहीं, सिर्फ धुन है।
0: अच्छा तो बोल मैं देती हूँ, जरा धुन तो सुनाओ।

दोस्तों आप आनंद लीजिए इस गीत का और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को भोर सुहानी कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी।

0: ಸಮಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನೇನು 8 ಗಂಟೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ದೆಹಲಿಕಿಂತ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು.
1: ಸಮಯ 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿ, ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ.
2: ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೆ ಸಮಾಚಾರ ಪ್ರಭಾತ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅರೋಡಾ. मुख्य समाचार. सरकार ने कहा 2000 रुपए तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे. विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ. भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की. और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में. अब समाचार विस्तार से. सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है. एक रिपोर्ट.
3: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे. अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं. हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे. सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है. समाचार कक्ष से जया भारती.
2: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है. दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे. सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन. हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे.
4: 2 दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं. इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है. इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके बाद 17 और 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे. अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
2: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है. दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में हैं. 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी. इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी. एक रिपोर्ट.
4: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में $8.66 अरब से घटकर वर्ष 2025-26 में $7.95 अरब रह गया, जो 8.22% कम है. भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल है. समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी.
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है।

0: रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने की खबर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत, PF की सूचनाएं अब WhatsApp पर मिलेंगी। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग, कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है, लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए, वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: Pradesh, Haryana, Rajasthan and Delhi signed Kishao Multipurpose Dam Project Agreement for rejuvenation of Yamuna River. India committed to promoting circular economy as part of sustainable development, says Environment Minister Bhupendra Yadav. World Circular Economy Forum gets underway in Gandhinagar. Prime Minister Narendra Modi hails engineers as karma yogis of nation building. U.S. court blocks Trump administration's new visa rules for foreign students and journalists. IMD forecasts heavy rainfall over Punjab, Delhi, Kutch, Tamil Nadu, Assam and Meghalaya today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second T20 international in Delhi this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
1: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
2: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
3: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
4: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
1: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय

0: जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि केशव बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
2: अंडर द EPR मैकेनिज्म
3: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है जिससे क्षमता विस्तार तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
4: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रियता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रियता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास पारिस्थितिकी समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग हरित ऊर्जा टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खूंट आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
5: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। M विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में

0: अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीक को दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
2: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूँ।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुँचने वाला माध्यम है।
4: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
5: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
6: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
5: आकाशवाणी समाचार के लिए से
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्म योगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियां बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा, भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है।

तो कल्पना कीजिए श्रोताओ, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नजर एक

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओ, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटी। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओं, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खेजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं और जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ, लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे, लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं। वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें। एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
3: हेलो चिल्ड्रन।
4: हेलो मैम।
3: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
5: वी आर फाइन मैम।
6: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू मैम?
3: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विथ यू। आर यू रेडी?
5: यस मैम।
3: ऑलराइट, यू ऑल नो दैट pets are special members of our family, isn't it?
5: Yes,
7: pets are so lovely.
3: Right, Soham.
8: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
8: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
9: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
10: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
5: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
5: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
11: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
12: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
13: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?

0: Now children, tell me, what did you learn from this poem?
1: Ma'am, all colors are beautiful.
0: Oh yes, now let's have a little game. I'll name the bird and you will tell the color of that bird. Okay?
2: Okay, ma'am.
0: Good.
3: Yes, ma'am.
0: Good. The bird is parrot. Tell me the color.
2: Right.
0: Now, Soham will tell.
4: Green.
2: Yes, it is green. Yes.
0: Right. Now, listen to the sound of parrot. The next bird is sparrow. Now, tell me the color. Who will tell?
2: Me.
0: Navya, Vahanya, Soham.
3: Me.
0: Lavish.
5: Ma'am, brown.
0: You're right. Sparrow has mostly three colors. Brown, white and
2: black.
0: Right.
1: Crow is also black, ma'am.
0: Yes, black is a beautiful color. And now listen to how crow sounds.
2: Ah! Ah!
0: Now you all know about the sounds of birds. Great.
2: Yes, ma'am.
0: So children, did you like the poem?
2: Yes.
0: Okay, and the song and the little game of birds?
2: Yes, ma'am.
0: Then let's clap for each other. Yay!
6: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता. ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है. कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाईं.
7: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है. श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल. वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है. जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था. सुनना चाहते हो इसकी कहानी?

0: उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
1: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
0: अच्छा बाबू।
1: और सुन
0: जी,
1: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी। हैं? भगिनी निवेदिता
0: हैं?
1: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
0: क्या कह रहे हैं बाबू, मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
1: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
0: अच्छा?
1: हाँ, बंगला बोल लेती है। बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
0: अच्छा?
1: अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
0: वो तो ठीक है, पर बाबू।
1: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है, जा भाग यहाँ से।
0: अच्छा,
1: पहले मैं उन्हें भीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
2: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू? उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
1: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
3: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
1: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
3: धन्यवाद।
2: अब बताइए बोस बाबू
1: जी,
2: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
1: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के डर से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
3: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
1: नुकसान तो है सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गई तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
3: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू, जब परिवार की बहू बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
1: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
3: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
2: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
3: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
2: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू जी, यही बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
1: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं इस विषय?
2: वो व्यवस्था हो गई है, माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
1: चलिए, तब तो ये चिंता भी दूर हुई, अब केवल आपके लिए छात्राओं की व्यवस्था कर दी है। वैसे एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती, कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
3: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई, आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं, शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
2: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
4: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोसपाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदामणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
5: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
6: गुड मॉर्निंग दीदी।
3: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
7: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
3: फिर तुमने क्या कहा?
7: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
3: अच्छा।

0: ठीक है। तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
1: हाँ दीदी।
0: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी, तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो।
2: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
1: दीदी, ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
0: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़ी हैं? भीतर आइए ना। जाते चारू, माशी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
1: अच्छा दीदी।
0: नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े थोड़ी लौट जाने देंगे।
1: दीदी ये लीजिए आसन।
0: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुनाकर जाइएगा। किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा? क्या कहती है माँ, आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए। वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ?
3: हाँ
0: सो तो है। मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ। अच्छा आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
3: तबीयत तो ठीक है।
0: अच्छा मीम दीदी, अब मैं चलूंगी, कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूंगी आस पड़ोस की और लड़कियां भी राजी हो जाएं तो।
3: ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
4: निवेदिता के सौम्य सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुई।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्हा सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए

0: स्वीकार्य हैं और उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में डीआरडीओ ने मिसाइल से लेकर रडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है।
2: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
3: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपये से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26.86 अरब डॉलर पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी

0: समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
1: We need to develop sports infrastructure.
2: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
1: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर कर रहे हैं और नीट क्लियर कर रहे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने HIV एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. New Delhi says core concerns of India-China relations should be guided by mutual respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. Saudi Arabia activates warning in Mecca amid Houthi attack speculations. And in men's cricket, second T20 international between hosts Afghanistan and India underway in Delhi. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
7: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
6: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region.
7: We are deeply concerned with the escalation in the situation that we see in the Red Sea region. We have condemned the attack on the Saudi sovereign territory, including on civilian infrastructure and economic assets. Such attacks, they undermine regional stability and threaten freedom of navigation through the Bab el-Mandeb. These are unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region. Having said that, let me say that we continue to receive energy supplies from that part of the world.
6: On the attack on commercial vessel MTL Gaia off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. When asked about the reward of 70 lakh Pakistani rupees announced by Pakistan on Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar, the spokesperson said such gimmicks and attempts at hoodwinking by Pakistan are not new. He said Pakistan must take concrete action rather than making announcements that are ultimately of no consequence. In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif today. Alerts had also been issued and lifted in six cities, including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. More from our West Asia correspondent.
8: Saudi Arabia today issued fresh emergency alerts in Makkah, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with authorities saying the danger had passed. Alerts were earlier issued and lifted also for the city of Yanbu, the main Saudi Red Sea oil port. Monday's Houthi attacks on Khamis Mushayt, Aba and Taif had injured 13 civilians and damaged homes and vehicles in Saudi Arabia. The Saudi-led coalition has promised a firm response and retaliation. In the Strait of Hormuz, UK MTO reported another vessel being hit on Monday. The daily commercial ship traffic through the strategic waterway fell to just 4 on Monday compared to 10 a day earlier. From Dubai, Manish Shiva for Akashvani News.
6: Meanwhile, a Houthi official today claimed that Saudi warplane struck Taiz province of Yemen, killing 3 people, while Human Rights Watch accused the Houthi rebels of possible war crimes with its attacks on commercial vessels. The renewed fighting in Yemen is endangering civilians and threatening shipping through the Red Sea, a route that has become more important due to disruptions in the Strait of Hormuz. External Affairs Minister Dr. Jai Shankar today laid emphasis on India's strong commitment to multipolarity, which emanates from independent stance and belief in strategic autonomy. Delivering the valedictory address of Silver Jubilee celebration of Indian Council of World Affairs in Delhi, Dr. Jai Shankar expressed confidence that India is destined to rise in a turbulent world. He underscored the contemporary trends shaping India's diplomacy and nation's growing economy and capabilities in the last decade and its implications for global engagement.
9: When India advocates dialogue and diplomacy, when we stress that endless war must give way to an end to war, this is our particular way of thinking. Indian diplomacy will always have peace and development as its central agenda, not just as an idealistic goal, but as a sensible prescription for the world order to advance progress and prosperity.
6: This is Akashvani giving you the news.
0: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
6: The Finance Ministry today clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The ministry said that payments to merchants P2M up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. The ministry said that consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. Our correspondent reports that a dedicated fund for promoting use of UPI by small merchants will be set up with contribution of 5% of total MDR collections.
10: The Finance Ministry said that charges will apply only to person-to-merchant transactions exceeding 2,000 rupees. It said that UPI app providers are explicitly prohibited from levying platform fees or hidden charges. The ministry said that banks have been advised to ensure that merchants do not pass merchant discount rate charges to customers for UPI payments. A nominal MDR of 0.4% will be levied on person-to-merchant transactions about 2,000 rupees, while for high-value transactions of 75,000 rupees and above, MDR will be capped at 300 rupees per transaction. The ministry informed that small merchants receiving up to 1 lakh rupees per month via UPI QR codes under the person-to-person merchant classification will continue to enjoy mandatory zero MDR for all transactions. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
6: The government has amended the Payment and Settlement Systems Act 2007, empowering the government to notify specific electronic payment modes where no charges shall apply. The country's overall workforce participation rate, WPR, for age 15 years and above increased to 52.8% in August, the highest level recorded since March 2026. According to the monthly labor force and unemployment data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, rural WPR increased by 1.3% to 55.8%, whereas the urban WPR declined 0.5% to stand at 47% in August.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है श्रोताओं स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
2: नमस्कार धन्यवाद
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां
0: Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls nearly 800 points. Nifty settles at 23,119. Country's overall workforce participation rate WPR increases to 52.8% in August. Highest level since March this year. And in the global crude oil market, Brent crude rises by 0.4%.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट सेंसेक्स लगभग 800 अंक लुढ़का निफ्टी 23,119 पर बंद हुआ देश की कुल कार्यशक्ति भागीदारी दर अगस्त माह में बढ़कर 52.8% हो गई है इस वर्ष मार्च के बाद सबसे ऊंचा स्तर है और ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत लगभग आधा प्रतिशत बढ़ी

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे समक्ष एके भट्टाचार्य जी विराजमान हैं. उनसे हम तमाम आर्थिक खबरों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे. लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि दिन के अंतराल में दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 778 अंक यानी 1% की गिरावट के साथ 74,004 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 280 अंक यानी 1.2% फिसलकर 23,119 पर स्थिर हुआ. बाजार के व्यापक स्तर पर भी भारी बिकवाली देखी गई. निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक 2% से अधिक और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग 2.5% नीचे आया. शुरुआत में बाजार गैप अप के साथ खुले, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण जल्दी ही अपनी बढ़त गंवा दी. इसके बाद दोनों सूचकांक नीचे आ गए और पूरे सत्र के दौरान चौतरफा बिकवाली के कारण बाजार में गिरावट देखी गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended sharply lower today. Sensex plunged 778 points, or 1%, to close at 74,004. Nifty shed 280 points, or 1.2%, to settle at 23,119. The broader market also witnessed a sharp decline, with the Nifty Mid-Cap 100 index falling 2.1% and the Nifty Small-Cap 100 index losing 2.4%. Earlier, the markets opened with a gap up but soon realized it erased the initial gains and amid rising global uncertainties. Both the stock market indices then turned lower and remained on a downward trajectory for the rest of the session as a broad-based sell-off swept across the board.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे अधिक नुकसान उठाने वाली कंपनियों के शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 6%, इंडिगो 4% और टाइटन तथा बजाज फिनसर्व 3% से अधिक नीचे आए. वहीं एचसीएल टेक 4%, इन्फोसिस 3.5% से अधिक और टेक महिंद्रा के शेयर 2.3% की बढ़त के साथ बंद हुए.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 26 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, a capital goods shed 4.2%, realty lost 3.9%, and industrials dropped 3.6%. In contrast, information technology gained 1.9% and focused IT rose 1.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 3,381 companies declined, 1,109 companies advanced, and 194 companies remain unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में आज 41 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ.

0: भट्टाचार्य जी, जिस तरीके की हम वैश्विक अनिश्चितताएं देख पा रहे हैं, हमने देखा कि 10-year ट्रेजरी यील्ड वो लगभग 5% को छू करके लौटा और बंद हुआ लगभग 5% पर। ऐसे में जो उभरता बाजार है, यानी कि अगर मैं स्पेसिफिकली भारत के बाजार की बात करूं, उस पर क्या असर पड़ता आप देख पा रहे हैं?
1: देखिए, आपने ठीक ही कहा है कि जो वैश्विक स्थिति जो है
0: जी,
1: वो भारत के स्टॉक मार्केट के ऊपर काफी प्रभाव डाल रहा है इस वक्त। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वैश्विक स्थिति इसके ऊपर प्रभाव डाल रही है। हमारे देश में भी जो एक आर्थिक जो स्थिति है वो भी एक
0: कारण है।
1: पहली बात तो है कि जो हमारी जो कच्चे तेल की दाम जो है
0: जी,
1: वो करीबन $108 पर बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल आ गई है। ये कुछ महीने पहले ये 78-80 में मंडरा रही थी, अब उसके 80 से बढ़कर 108 में आना, और आप जानते हैं कि हमारी जो भारत की जो आयात के ऊपर, तेल का आयात के ऊपर जो निर्भरशीलता है वो करीबन 80-85% के ऊपर है। तो उससे हमारी जो देश की जो फाइनेंसेस जो हैं, कंपनियों की जो कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है, उसमें काफ़ी प्रभाव डालता है। इसीलिए एक तो स्टॉक मार्केट में उसी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आपने जो कहा कि जो वैश्विक बाजार में, पर्टिकुलरली जो अमेरिकन बाजार में जो यील्ड की जो जो जो जो 5% तक आ गई है, उसका ये एक दिन का ये आकलन नहीं है, ये बहुत सालों से जो सरकारों की फिस्कल एक्सेसेस जो हो रही थी, उसी का कारण हम देख रहे हैं कि जो यील्ड, मतलब जो बॉन्ड के जो दाम जो है वो गिर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो FII जो है उनको एक इजी एक ऑप्शन मिल रहा है, वो इजी ऑप्शन वो स्टॉक मार्केट से, हमारे स्टॉक मार्केट से बाहर जाकर अपने अमेरिकन स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड पेपर्स में वो अपने आप को निवेश कर रहे हैं, क्योंकि दाम नीचे हो गए हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो उनकी जो रिटर्न्स जो है वो अचानक ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लग रही है। और तीसरा बात जो है, मैं अभी कहता हूँ कि जो हमारी जो हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन जो है, मुद्रास्फीति जिसे हम कहेंगे, वो CPI का नंबर अभी कल परसों आया था, उसमें अगस्त का नंबर 4.8% में आया है। उसकी यही दर्शाता है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशनरी पोटेंशियल जो है और WPI थोक मूल्य जो है वो करीबन 9% के ऊपर है। तो 9% थोक मूल्य के ऊपर है और खुदरा मूल्य में 4.8% में है। तो इसको दिखाकर जो इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्टरी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर अक्टूबर में जो एक डर कहिए या एक आशा थी या निराशा थी कि इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ जाएंगे, वो भी है। और कल फेड का भी निर्णय है कि वो किस तरह से वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए। बहुत लोगों का मानना है कि कल ही शायद फेड अपना इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ा दे। तो उससे क्या होगा कि जो सारी जो वैश्विक स्थिति और भारतीय आर्थिक स्थिति और मार्केट की जो आउटलुक जो है, उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, उसी को दर्शा रहा है आज का स्टॉक मार्केट।
2: AKB, you mentioned about how important the interest rates are because of how the RBI will possibly react in its MPC meeting on October 7. And if the repo rate goes up, clearly that would also mean that lending rates would go up and the valuation of banking stocks is also affected. Today, the big hit in the domestic stock market, since we've already spoken about global uncertainty and how inflation is being linked to costs and business performance, Bank Nifty took a hit. It went down by 812 points. Is that likely to continue? Because banking performance has been very good as far as their corporates are concerned. Their net interest margins have improved. NPAs have come down. Why is it that banks took a hit today?
1: Well,

आशा भोसले की आवाज में अजीज कश्मीरी के शब्दों और ओपी नैयर के संगीत में पिरोया हुआ ये गीत था फिल्म ये रात फिर ना आएगी से। वैसे गीत मेरे मनमीत वाली रात तो फिर से आ चुकी है मेरे यानी कि अभिनीत के साथ। तो चलिए जल्दी से सुनते हैं अगला गीत फिल्म दिवाली की रात से तलत महमूद का गाया हुआ, जिसे लिखा नक्श लालपुरी ने और संगीतकार हैं स्नेहल भटकर।

1973 में आई फिल्म जोशीला से किशोर कुमार की आवाज में इस गीत के साथ ही हमारा भी अपने घर का रास्ता देखने का वक्त हो चुका है। तो आज के गीत मेरे मनमीत के साथ ही मुझे यानी कि अभिनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा। आगे आप सुनेंगे समाचार और हमेशा की तरह सुनते रहिए FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। अपना रखिए अच्छे से ध्यान। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित

0: कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपए पाकिस्तानी के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्तियों से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। यह 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में कार्यक्रम में अ सेंचुरी ऑफ सर्विस द RSS इन 100 एक्ट्स ऑफ सेवा नाम की एक पुस्तक का विमोचन किया। ये किताब तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर तमिलीसाई सौंदर्यराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की 100 वर्ष की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दर्शाती है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच में जीत हासिल कर ली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। और आज निशिगंधा के बहाने हम बात करेंगे सपनों की। सपने जो हम अक्सर देखते हैं, कभी खुली आंखों से, कभी बंद आंखों से। ख्वाब प्यारे लगते हैं, जब हकीकत से मिलते हैं तो थोड़े भारी लगते हैं। खैर, ख्वाबों के बारे में, सपनों के बारे में बहुत से शेर शायरी, बहुत सी बातें कही गई हैं। आज हम भी उन्हीं में से कुछ बातों को आपस में साझा करेंगे।

ये सपना वही है या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ सपने हम सब देखते हैं और भर भर के देखते हैं। खुली आंखों से तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सपने देखते हैं। वैसे भाई सपने अगर माना जाए तो दो तरह के होते हैं। वही जो मैं कह रही थी कि एक वो जो हम सोते समय आंखों से अचेतन मन में देखते हैं और दूसरे वो जिन्हें हम खुली आंखों से अपने भविष्य को संवारने के लिए देखते हैं। और दोनों ही तरह के सपने हम सबके जीवन, उसकी मानसिकता और कहीं ना कहीं वो हमें प्रेरित भी करते हैं। सोते समय आने वाले सपने हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक और कह लें कि जटिल प्रक्रिया है, लेकिन जो हम जागते हुए देखते हैं वो हमारी सोच के कारण हम उन सपनों को देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम देखते हैं।

बात आज निशिगंधा में हम कर रहे हैं सपनों की. सपने कई बार बहुत अजीब सपने आते हैं. ऐसी ऐसी चीज़ें सपनों में आती हैं जिनके बारे में हम दिन में क्या कभी बात ही नहीं करते, कभी सोचते भी नहीं. ऐसी जगह हमें सपनों में दिख जाती है और कई बार हमें लगता है हम इसी घर में थे, यहीं थे, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लगता है. ये भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम किसी जानने वाले से बात कर रहे थे सपनों में, लेकिन वो जानने वाला उसकी शक्ल वैसी नहीं थी जैसी वो हकीकत में नज़र आता है. तो सपनों की दुनिया भी बहुत अजीब है. कई बार इन्हीं सपनों में हम उन बिछड़े हुए लोगों को भी देख लेते हैं जिनसे बिछड़े ज़माना हो गया है.

बहुत सारे चेहरे हमें सपनों में भी मिल जाते हैं जिन्हें हम हकीकत की जिंदगी में ढूंढते रह जाते हैं। मनुष्य का जीवन जो है ना वो आकांक्षाओं से भरा हुआ है और ये सपने ही हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन को एक सही दिशा प्रदान करने के लिए सपनों का होना भी बेहद जरूरी है। सपनों के बिना हमारा जो जीवन है ना वो बिल्कुल नीरस हो जाता है, उसका उद्देश्य ही नहीं रहता। जब कोई सपना होता है तो हम उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयास भी करते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, खिलाड़ी बनना है, वैज्ञानिक बनना है या सिंगर बनना है, तो उसका भी तो वो सपना देखता है ना, और वही सपना उसे प्रेरित करता है जल्दी उठने के लिए, रियाज करने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए। और जब वो ये सारी मेहनतों से गुजरता है तो वो निखर जाता है और वो बनता है जो वो बनना चाहता था। तो ऐसे ही खूबसूरत सपने सजाते रहिए और जीवन को आगे, निरंतर आगे बढ़ाते रहिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू

0: पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। रात्रि के 12:37 और हो गए हैं पूरे 27 सेकेंड। आप हैं माधुरी के साथ निशिगंधा के इस सफर में, और आज हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की। जी हाँ, ख्वाब तो हम सभी देखते हैं और तरह तरह के देखते हैं। कभी ऐसी ऐसी खूबसूरत जगहों पर जाने के भी ख्वाब देखते हैं कि उनके बारे में सुना है कि धरती पे ऐसी जगहें जन्नत हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना, मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। मेरा भी यह ख्वाब है कि कभी मैं कश्मीर जाऊँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं कश्मीर होकर आए होंगे, लेकिन हाँ, मेरा ख्वाब अभी ख्वाब है।

भाई कश्मीर का सपना तो है, चलिए कभी अगर यूं ना जा सके तो सपने में ही कश्मीर चले जाएंगे। चलिए कोई नहीं, और हम बात कर रहे हैं आज निशिगंधा में सपनों के, सपने, उड़ान भरते हुए सपने, बहुत प्यारे खूबसूरत सपने। लेकिन कई बार जिंदगी की हकीकत हमें डराती भी है, हमारे सपने टूटते भी हैं। बहुत सारी चीज़ें करने के ख्वाब हम देखते हैं और कई बार अच्छे अच्छे ख्वाब भी टूट के चकनाचूर हो जाते हैं। और जब ख्वाब टूटते हैं ना, तो सिर्फ ख्वाब ही नहीं टूटते, हम भी कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन जिंदगी है दोस्त, इस बिखराव को भी हमें समेटना होता है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। जी हाँ, इसी तरह के हौसले के साथ हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है। और हाँ, ख्वाब देखना नहीं छोड़ना है, चाहे हमारे ख्वाब हमें रुला के ही क्यों ना जाएं।

सपने टूटते हैं हम ना उम्मीद होते हैं और सपने हमें इसी तरह रुलाते हैं लेकिन सपने हमें जीवन की राह भी दिखाते हैं सपने हमें रोमांटिक भी बनाते हैं और अगला गीत जो मैं आपको सुनवाने वाली हूँ ना उसके बिना सपनों की ये महफिल कैसे कंप्लीट हो सकती है जी हाँ ड्रीम गर्ल की बात करें वो गाना तो मैं आपको सुनाऊंगी ही उससे पहले कुछ और भी कहूँगी और ये देखिए चंद लाइनें हैं बड़ी प्यारी हैं आप तक पहुँचा रही हूँ कि काश कोई हम पर भी इतना प्यार जताती पीछे से आकर वो हमारी आंखों को छुपाती सीने से लगाती मुंह बनाती पर बेगानी राहों पर इस तरह छोड़ कर न जाती काश कोई हम पर भी कोई हमारी भी नींदों में आती ख्वाबों में आती मुझे चिढ़ाती और लड़के मनाती दर्द को वो मेरे कम कर जाती काश कोई हमारे भी ख्वाबों में आती तो चलिए इन सब पंक्तियों के बाद अब वो प्यारा गीत जो ड्रीम्स की बातें हो रही हैं तो ड्रीम गर्ल को तो आना ही पड़ेगा

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

तो भाई सपने तो ऐसे ही होते हैं, आंखों में आते हैं, समाते हैं, चले जाते हैं। कई लोग अपने ख्वाब पूरे करने के लिए बस अपनी रात भी गवा बैठते हैं, और बहुत सारे हमारे अभी भी साथी जो हमें सुन रहे होंगे, हो सकता है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाग रहे हों। तो चलिए, रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, लेकिन निशे गंधा का ये सफ़र यही हम समाप्त करेंगे इस गीत के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्य जहाज MTEL गैला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हुती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हुती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क होगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। औषधि विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPR, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और विभागों के सक्रिय भागीदारी के साथ संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई परिसरों में वृक्षारोपण भी किया गया। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, केरल और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बिहार में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Sandhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
1: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
3: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. Finance Ministry has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। और गीत सुहाने में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्यारे प्यारे पुराने गाने, ओल्ड क्लासिक्स। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, एकदम चिपक के बैठ जाइए और इन प्यारे प्यारे गीतों को हम पहुंचाएंगे आप तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। और ये जो गीत है ये हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म सूरज से।

ये प्यारा सा गीत हम आपके लिए लेकर आए थे फिल्म सूरत से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा।

जी हाँ, ये हवा ये नदी का किनारा, इतना प्यारा सा गीत हम लेकर आए थे आपके लिए फिल्म घर संसार से, आशा जी और मन्ना डे के आवाज में, संगीत रवि साहब का।

ये दर्द भरा गीत आप सुन रहे थे फिल्म मेरे महबूब से, लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में और संगीत दिया नौशाद साहब ने। अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म पालकी से।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 1:33 और हो गए हैं पूरे 26 सेकंड। ये सफ़र है गीत सुहाने का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। और अभी आपने जो प्यारा सा गीत सुना था वो था फिल्म पालकी से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। और अब हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ये गीत फिल्म गहरा दाग से।

ये बहुत ही प्यारा सा गीत है, जब भी सुनते हैं एकदम वैसे ही दिल को छूता है जैसे लगता है आज ही पहली बार सुना है। फिल्म गहरा दाग से ये गीत सुन रहे थे आप मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में, संगीत रवि साहब का और बोल लिखे शकील बदायूनी ने।

फिल्म जिंदगी से ये गीत सुना आपने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा था ये गीत और बोल लिखे हजरत जयपुरी और शैलेंद्र साहब ने। अब अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म जिंदगी और ख्वाब से।

तो ये प्यारा सा गीत आपने सुना मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शंकर जयकिशन का संगीत और फिल्म थी हमराही। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफ़र है गीत सुहाने का। अगला सुहाना सा गीत है फिल्म संगम से आप सभी के लिए।

नाराज ना होना। खूबसूरत गीत फिल्म संगम से सुना आपने मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। शंकर जय किशन के संगीत से सजा था ये गीत, बोल लिखे शैलेंद्र ने। और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म तलाश से। गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ, ओल्ड मेलोडीज। तो गीत सुहाने से ये आखिरी जो नगमा है आज की रात का आप तक पहुंच रहा है फिल्म तलाश से। लता जी, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में संगीत दिया है एसडी बर्मन साहब ने।

और इसी के साथ गीत सुहाने की ये महफिल यहीं समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्य जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल सदस्यों और लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हुती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज़ प्रांत में हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क होगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का

0: मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
1: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण कल शुरू हुआ। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाना, नई चुनौतियों का सामना करना और दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। सैन्य अभ्यास का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। औषध विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPER, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई परिसरों में वृक्षारोपण भी किया गया। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
3: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
2: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthis was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said, New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. The Finance Ministry has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The ministry yesterday said that payments to merchants P2M up to 2,000 rupees along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants will also remain free. The ministry said consequently about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. NPCI has said that a revised UPI merchant discount rate framework has been introduced on select merchant transactions effective from 15th of next month while keeping UPI free for consumers.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये वक्त है रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। तो रात सुरमई को आगे बढ़ाने के लिए हम शुरू करते हैं ये गीत, और ये गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म कर्ज़ से।

अरे हम पूछा करते थे और वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो जो पल है ना, कहीं वक्त की शाख पर ही अटके रह जाते हैं। सच में ये जो उम्र होती है ना जवानी की, 16, 17, 18 साल, वाह क्या बात होती है, बेफिक्री की उम्र होती है। और हर उम्र में ख्याल आता है इस उम्र का। तिनका उड़ान पर है हवाओं के साथ साथ, मैं चल रहा हूँ सबकी दुआओं के साथ साथ। वक्त सबका आता है, मन छोटा नहीं करना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि देर सवेर हो जाती है, और बातों ही बातों में ये बात भी कि तिनका तिनका कांटे तोड़े सारी रात कटाई की, क्यों इतनी लंबी होती है।

करते प्यार में अक्सर दिल बड़ा मचलता है, बहुत कुछ कहना होता है पर कहने से डरता है। धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। जी हाँ, पहले प्यार की बात ही अलग होती है और बातों में भी क्या क्या अलग होता है, ये बताने वाला है हमारा अगला गीत।

पहले प्यार की बहुत सारी बातें हैं जो गाहे बगाहे याद आ जाती हैं। और सच तो ये भी है कि सबके नसीब में ये पहला प्यार थोड़े ही होता है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं दिल की चोरी तक। जी हाँ, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, देखते ही आंखों में घर कर गया, दहर में मैं खाक बसर ही रहा, उम्र को इस तौर बसर कर गया। और दिल ही नहीं है मंजिले सीना में अब, यहां से वो बेचारा सफर कर गया, चोरी में दिल की वो हुनर कर गया, देखते ही आंखों में घर कर गया। और ये पंक्तियां लिखी मीर तकी मीर साहब ने, और आप तक पहुंचाई है इस नाचीज ने, और अगला गीत भी आप तक पहुंचा रही हूं।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है रात सुरमई का और रात्रि के 2:32 और हो चुके हैं पूरे 48 सेकंड।

रात सुरमई के इस सफ़र में आप सुन रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीत और उम्मीद करती हूँ कि रात के इस सफ़र में आपके अच्छे हम सफ़र साबित होंगे ये गीत।

वफा तुझसे ए बेवफा चाहता हूँ, वफा तुझसे ए बेवफा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ।

लफ्ज बिखर जाएंगे होठों से तबस्सुम की तरह, एहसास की बातें हैं ये, दिल थाम के सुनिए।

आगे चलें या पीछे चलें और चलते रहें, लेकिन रात सुरमई का ये सफ़र अब कह रहा है कि यहीं इसको विराम दिया जाए। तो आखिरी गीत आपकी नज़र करती हुई, गुरेज पार है नया रास्ता किधर जाएं, चलो कि लौट के हम अपने अपने घर जाएं। इसी के साथ दीजिए विदा माधुरी को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित होगा। 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैस प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक,

0: कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
1: औषध विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के आह्वान के अनुरूप 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि सभी 7 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU और विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने यह स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कई परिसरों में वृक्षारोपण भी किया गया। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल शुरू हुआ। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाना, नई चुनौतियों का सामना करना और दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है। सैन्य अभ्यास का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 160 रन बनाए। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में यह लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
3: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
2: The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with the Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said that the issue of the Houthi was also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned. Mr. Jaiswal said, New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region. On the attack on commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India. The Finance Ministry has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The Ministry yesterday said that payments to merchants P2M up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. The Ministry said, consequently, about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. NPCI has said that a revised UPI merchant discount rate framework has been introduced on select merchant transactions effective from 15th of next month, while keeping UPI free for consumers. In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif yesterday. Alerts have also been issued and lifted in 6 cities, including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. Saudi Arabia yesterday issued fresh but very brief emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with authorities saying the danger had passed. The Department of Pharmaceuticals organized Swachhta Pakhwada from 1st to 15th of this month, realizing Prime Minister Narendra Modi's call for Swachh Bharat, Swasth Bharat, of maintaining cleanliness around. Ministry of Chemicals and Fertilizers said, with active participation of all 7 National Institutes of Pharmaceutical Education and Research, NIPERS. public sector units and

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:11 और 6 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

जानते हैं दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि अगर कोई दूर है तो उससे हम प्यार नहीं करते। कई बार इंसान बहुत दूर होता है लेकिन उसकी याद हर पल हमारे साथ रहती है। फासले सिर्फ कदमों के होते हैं, दिल के नहीं। सच्चा प्यार तो वो है जिसमें सामने न होकर भी कोई दिल के बहुत करीब महसूस हो, उसकी एक आवाज चेहरे पर मुस्कान ले आए और उसकी याद अकेलेपन को भी खूबसूरत बना दे। तो चलिए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत में।

प्यार में सबसे खूबसूरत एहसास होता है किसी की आवाज का इंतजार। दूर बैठे इंसान को बस इतना भरोसा है कि वो मुझे याद कर रहा होगा, मुझे पुकार रहा होगा। मोहब्बत में इंतजार अच्छा लगता है, लेकिन जब इंतजार बहुत लंबा हो जाए ना, तो दिल की बेचैनी भी बढ़ने लगती है। फिर मन करता है कि बस एक आवाज आए और कोई हमें पुकार ले।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:28 और 54 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, मोहब्बत में इंतजार शायद सबसे खूबसूरत एहसासों में एक है। जब किसी खास इंसान के लौटने की उम्मीद दिल में होती है ना, तो वक्त चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, दिल उसका इंतजार करना नहीं छोड़ता। कभी कभी सामने वाला पास नहीं होता, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, मुलाकात भी नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल कहता है कि वो आएगा जरूर, क्योंकि सच्चे प्यार में दूरी हो सकती है लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।

0: दोस्तों, कभी कभी प्यार में सबसे प्यारी शिकायत यही होती है कि सामने वाला हमसे बातें तो करता है लेकिन दिल की बात नहीं कहता। उसके बातों में अपनापन भी महसूस होता है और कभी कभी लगता है कि शायद ये सिर्फ हमारी उम्मीद है। मोहब्बत में यही तो उलझन है। कभी उसकी एक छोटी सी बात दिल को यकीन दिला देती है कि प्यार सच्चा है और यही खामोशी मन में सवाल खड़े कर देती है कि क्या वो मुझसे सच में प्यार करता है या यूं ही बातें करता रहता है। तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही एक नगमा।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

कभी कभी मौसम भी दिल की बात कहने लगता है बादलों का यूं घिरना हवा का कुछ गुनगुनाना और किसी की याद का अचानक दिल में उतर आना शायद मोहब्बत का असर कुछ ऐसा ही होता है जब दिल किसी के ख्यालों में खो जाए तो बादल भी दीवाने लगते हैं और हवाएं भी कोई प्रेम संदेश लेकर आती हुई महसूस होती है यही तो पुराने गीतों की खूबसूरती है साधारण से मौसम को भी एक खूबसूरत एहसास में बदल देना तो चलिए सुनते हैं ये गीत

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार, 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में मक्का, जेदा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों की तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान में खतरा है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता है।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। मेघालय कैबिनेट ने कल मेघालय फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 में बदलावों को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य मेघालय को फिल्म निर्माण केंद्र के तौर पर बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री कॉनराड के सगमा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हमने प्रोत्साहन को अधिक लक्षित बनाने के लिए कुछ योग्यता शर्तों में सुधार किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ तेज हवा और मूसलाधार बारिश की संभावना है। दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 14 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Navneet Singh. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi last evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "The Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns." The spokesperson said External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with Saudi Foreign Minister on the sidelines of the BRICS summit. During the meeting, they discussed regional and international developments. Mr. Jaiswal said, "The issue of the Houthis were also discussed. There was recently an attack on Saudi Arabia, which India has condemned." Mr. Jaiswal said, "New Delhi is deeply concerned with the escalation in the situation in the Red Sea region." On the attack on commercial vessel MT El Gaia off the coast of Oman, Mr. Jaiswal said, "Targeting commercial shipping, seafarers, civilians and civilian infrastructure in the region is unacceptable to India." In Saudi Arabia, civil defense activated emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif yesterday. Alerts had also been issued and lifted in six cities including Yanbu, Saudi Arabia's main Red Sea oil port. Saudi Arabia yesterday issued fresh but very brief emergency alerts in Mecca, Jeddah and Taif in the context of potential Houthi attacks. The alerts were lifted in just a few minutes, with authorities saying the danger had passed. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar emphasized India's strong commitment to multipolarity, rooted in its independent stance and commitment to strategic autonomy. Delivering the valedictory address at the Silver Jubilee celebration of the Indian Council of World Affairs in Delhi, Dr. Jaishankar expressed confidence that India is destined to rise in a turbulent world.
4: "When India advocates dialogue and diplomacy, when we stress that endless war must give way to an end to war, this is our particular way of thinking. Indian diplomacy will always have peace and development as its central agenda, not just as an idealistic goal, but as a sensible prescription for the world order to advance progress and prosperity."
3: The Finance Ministry has clarified that there will be no charges for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. The Ministry added yesterday that person-to-merchant P2M payments up to 2,000 rupees, including transactions covered under the zero MDR framework for small merchants, will also remain free. Consequently, the Ministry stated that about 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It added that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. The National Payments Corporation of India, NPCI, announced that a revised UPI merchant discount rate framework has been introduced for select merchant transactions, effective from the 15th of next month, while keeping UPI free for consumers. Chief ministers of six states have signed the Kisau Multipurpose Dam Project Agreement for the rejuvenation of the Yamuna River. These states are Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan, and Delhi. Speaking on the occasion, Union Home Minister Amit Shah said, "The central government has declared the Kisau project a national project." Mr. Shah added that the central government will bear about 90% of its financial burden, while the remaining 10% will be borne by the participating states.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 4:10 और 15 सेकंड। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अरुणिमा कार्यक्रम में शुरुआत हो चुकी है भक्ति में प्रस्तुति की और आज मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपके साथ मीना चौहान। दोस्तों जब मन बहुत थक जाता है ना तब दुनिया की भागदौड़ के बीच कहीं सुकून नहीं मिलता, तब इंसान अपने आराध्य की शरण में चला जाता है। वहां न कोई शिकायत रह जाती है ना कोई सवाल, बस मन में एक विश्वास होता है कि मेरे कान्हा सब देख रहे हैं और सब समझ रहे हैं।

दोस्तों, जब जब जिंदगी में सुख के पल आते हैं ना, तो हमारे आसपास लोगों की कमी नहीं रहती। खुशियां बांटने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है ना, तब मन भीतर से टूटने लगता है। तब अक्सर वही भीड़ धीरे धीरे कम हो जाती है। शायद इसलिए जिंदगी हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली पहचान खुशियों में नहीं बल्कि मुश्किल समय में होती है, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ आपका हाथ थामकर खड़ा रहता है ना, वही आपका सच्चा दोस्त होता है। और जब इंसान को लगता है कि अब कोई साथ नहीं है, तब ऊपर वाले पर विश्वास उसे संभालता है। आखिर सुख और दुख दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, और हमें बस हर परिस्थिति में अपना हौसला बनाए रखना चाहिए।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:27:25 अरुणिमा कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। दोस्तों, राधा और मीरा दो नाम, लेकिन प्रेम की दो अलग अलग तस्वीरें। राधा का प्रेम कृष्ण में अपना संसार देखता है, तो मीरा का प्रेम कृष्ण को ही अपना संसार मान लेता है। एक ने प्रेम को जिया और दूसरी ने प्रेम को अपनी भक्ति बना लिया। कभी कभी जिंदगी में भी कोई रिश्ता ऐसा होता है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और भावनाएं ही सब कुछ कह देती है। सच्चा प्रेम शायद वही है जिसमें पाने से ज्यादा समर्पण होता है और साथ होने से ज्यादा दिल में बस जाने की चाह होती है। इन्हीं भावनाओं को खूबसूरती से पिरोता फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, जिंदगी की राह में हर मोड़ पर कोई हमारे साथ चले ये जरूरी तो नहीं। कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंसान को अकेले ही तय करना पड़ता है। भीड़ साथ हो तो सफर आसान लगता है, लेकिन अकेले चलना ही हमें अपने भीतर की ताकत से मिलवाता है। कभी पीछे मुड़कर देखिए ना, जो लोग रास्ते में मिले, कुछ पल साथ चले और फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। शायद यही जिंदगी है, मिलना, बिछड़ना और फिर अकेले चलते रहना।

कहते हैं कि प्रेम जब सच्चा होना तो उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं होती, बस एक एहसास ही काफी होता है। और कृष्ण की बंसी की धुन में तो जैसे सदियों से उसी प्रेम की पुकार बसी है। बंसी बजती है तो राधा का नाम याद आता है, और राधा का नाम आते ही मन में एक ऐसी शांति उतरती है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यही तो सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने का नाम नहीं बल्कि समर्पण का नाम है, जहां दूरी भी रिश्ते को कम नहीं करती बल्कि प्रेम को और गहरा कर देती है।

सच यानी सत्यम, कल्याण यानी शिवम और सुंदरता यानी सुंदरम, इन तीन शब्दों में जैसे जीवन का पूरा दर्शन समाया हुआ है। खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती तो उस सोच में होती है जो किसी के जीवन में प्रेम, विश्वास और अपनापन भर दे। कभी कभी हम बाहरी सुंदरता को देखकर ठहर जाते हैं, लेकिन समय हमें सिखाता है कि असली सुंदरता मन की होती है, भावनाओं की होती है और उस सच्चाई की होती है जो किसी रिश्ते को उम्र भर खूबसूरत बनाए रखती है।

धन दौलत और सुख सुविधाएं इंसान को कुछ समय के लिए खुशियां दे सकती हैं, लेकिन मन का सुकून तो तभी मिलता है जब दिल में प्रभु का नाम बस जाए। मीरा ने भी तो यही कहा था कि उन्हें संसार की दौलत नहीं चाहिए, उन्हें तो अपने श्याम का प्रेम ही सबसे बड़ा धन लगता है। कि कितनी खूबसूरत बात है ना, जब मन में भक्ति का दीप जलता है तो छोटी छोटी खुशियां भी अनमोल लगने लगती है। प्रभु का नाम ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना समय इसे कम कर सकता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि लोगों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेनदेन निशुल्क रहेगा। इस तरह लोगों से व्यापारियों को लगभग 96% लेनदेन प्रभावित नहीं होगा। 2000 रुपए से ज्यादा के लेनदेन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली की में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में आयोजित 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग ले रहा है। ये सम्मेलन 19 सितंबर तक चलेगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। सम्मेलन में भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभाओं के 32 पीठासीन अधिकारी और 18 सचिव भी शामिल हैं, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में RSS नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ. तमिल सिलाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ये पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली विदेशी परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। ये अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। मेघालय कैबिनेट ने कल मेघालय फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025 में संशोधन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य मेघालय को फिल्म निर्माण केंद्र के तौर पर बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमने प्रोत्साहन को ज्यादा लक्षित बनाने के लिए कुछ योग्यता शर्तों में सुधार किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचयन जनभागीदारी अभियान का गीत जारी किया है। इस गीत को प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया है। ये गीत जनभागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को संगीत में आवाज देता है। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11 और 7 सेकंड। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हरियाली हो, खुला आसमान हो और सामने से जाता हुआ कोई रास्ता, बस मन करता है चलते ही जाए। जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है ना, रास्ते पहले से तय नहीं होते, लेकिन चलते रहने से मंजिल जरूर मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की।

फूल का काम है खिलना और इंसान का काम है मुस्कुराना। हालात जैसे भी हो, अपने अंदर की खुशी को मुरझाने मत दीजिए, क्योंकि एक मुस्कान कभी कभी पूरे दिन का रंग बदल देती है। तो चलिए सुनते हैं ये मुस्कुराता हुआ गीत।

दोस्तों, कुछ बातें कागज पर लिखी जाती हैं और कुछ दिल में, और जब दिल की बात फूलों के रंगों से लिखी जाए ना, तो उसका जवाब भी शायद एक मुस्कान ही होता है। तो मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM गोल्ड पर कार्यक्रम भोर सुहानी।

दोस्तों, पहाड़ों की अपनी ही एक भाषा होती है। खामोश रहते हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं, और पहाड़ हमें एक और बात सिखाते हैं, ऊंचाई चाहिए तो चढ़ाई से घबराना नहीं चाहिए।